प्यारी साध संगत जी, इतनी हाजरी प्रवान करते हुए भुला चुका दी किवा करना। असीस बख्शे सारे गुरमुख प्यारे रब वर्गिया संगत आप जुड़ बैठे हो। सतगुर के चरणों में अरदास करना, सतगुर अपना मेहर भरिया आसीस ते हथ रख के तरस करके सेवा लेंदे रहन। आओ सारे नंद शब्द जाप करके समाप्त।

सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुर आ

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाह

रंग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध

इस देही को बहु साधना करे मन ते कभु न बिखे आ टरे जल तो वह बहु देह नीत शोध कहा हुए काची पीत।

भोजन सुख सूद बिरध पयाव प्रसाद सहन मुख अपयाव बैठ कव दैन एहो निर्गुण गुण कछु ना बूजै बक्स ले हो तव नानक सी जय जे प्रसाद धारु पर सुख बस है सोत प्रात मीत बनता संग हस है जे प्रसाद पीवे सी तल जला सुखदाई पवन पाव के अमुला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्नी संग साध बसा दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना तिसे ते

करहि सलोग काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए हमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद।

भावे जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर तागा जा सुगा वी जय जय प्रसाद सब को माने मुखता को जस रसन बखाने जय प्रसाद रहता धर्म मान सदा त्याय केवल पार ब्रह्म

नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रभात, ब्रह्म ज्ञानी का सगले कार, ब्रह्म ज्ञानी आवृंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बणी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक।

प्रकारस्पदि कई कोट होए पुजारी कई कोट अचार विहारी कई कोट पैतीर्थवासी कई कोट बन ब्रह्मे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते

प्रवान कोड कर्म करे हम तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन करे आत

जीतु। जब लग भो मंग संग माए तब लग धर्म राज देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हम छूटै सहस कटे लाख कोठ तावे त्रिपत नावे माया पाछे पावे अनक भोग भिख्या के करे नह त्रिपतावे खाब खाब मरे बिना संतोख नहीं को राजे सो पर मनोरथ वृथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त हुए करण करावन आपे आप सदा सदा नान कर जाव करण करावन करने हार इस कह हाथ कहां विचार

गात निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवे पार राम की दरंगे गवे सुन कर भजन करन आगाने मन संतोख आतु पतिया ने पूरा गुर ख्यो जाका मंत्र अमृत दिह पेख है हुए संत

कहो गणी। जब एक हरग में अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौने उतार। जब निर्गुण प्रभु सहित सुपाय तब शिव सकत कहो कित ठाय। जब आपे आप अपनी जो तरे तब कम निडर कमन कद डरे। आपन चलत आप करने हर नानक ठा गुर अग में अपार। अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म वरण कहो कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत गोचर प्रभु का तब जितर गुप्त केह भूत लेखा।

होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविया है गुणी निधान, गाविया सुनिया मन रखिया भाहो दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे आ समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जे हव जाना आखा राही कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। तीर्थ नावा जे तिस भावा मिण भाणे के नाहे करी, जे तीसरठ उपाई वेखा मिण करमा के मिला लाई, मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई।

जाने मन कोई, मन्ने सुरतोवे मन बुद्ध, मन्ने सकल्प मन की शुद्ध, मन्ने मुच्छुट्टा न खाए, मन्ने जाम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पात स्यों प्रगट जाए, मन्ने मगन चल पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंद। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए,

भवन अपेख ऐसा राम निरंजन हुए देखो मन जाने मन कोय पंच प्रमान पंच प्रधान पंचे पावे दुर्गे मान पंचे सोहे दर्रा जान पंचा का गुरु एक ध्यान जे को कह करै विचार करत काय करण नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तबले उपर केता भार धरती होर पराय होर होर तस्ते भार तलै कमन जोर जी आजाद रंगा के नाम सबना लिखिया बुढ़ी कलाम यो लेखा लिख जाने को ए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाल्य रूप केती दात जाने कौन कूत किता पसावे को कवाओ तिसते हुए लख दरियाओ कुदरत कमन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरम पक्षार असंख मोल बलाए तार कुदरत कवन का विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंगल वटते हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करहे पार नानक नीच कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार हो अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन एह लिखे तिसर डाहे जि फुरमाहे तिब तिब पाहे जेता कीता तेता नाहू मिण नावे नाही को थाहू कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार परिये हथ पैर तन देहे पानी धोतै उतर सो खेहे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओह धोए भरिए मत पापा कै संग ओ धुपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीजा पे ही खाहो नानक हुक्मी आवो जाहो तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतरगा तीर्थ मलनाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कमण सो वेला वक्त कमण कमण थित कमण वार कमण सिर उत्ती माहो कमण जित हुआ आकार वेला पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखण लेख कुरान थितवार ना जोगी जाने रुत महो ना कोई जा करता सरठी को साजे आपे जाने सोई किब कर आखा किब सा राही क्यों वरणी किब जाना नानक आखण सबको आखा एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाही कीता जाका हो वह नानक जे को अपाओ जाने अगै गया ना सुहाय पा ताला पा ताल लख आगासा आगास ओड़ कूड़ कपाल थके वेद कहन कवात सहस अठारह कहन कतेबा असुलिकतात लेखा हुए ता लिखी आय लेख हुए विनाश नानक वड्डा आखी आपे जाने आप साला ही साला है एती सुरत ना पाईया नदियां अते वाह पव है समुद्र ना जानिया है समुद्र शाह सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुलना हो बनी जे तुस मनो ना विसर है अंत ना सिफती कहण ना अंत अंत ना करने देना अंत अंत न वेखण सुनन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार
ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ, ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਰਾਉ, ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ।

संतोख सरंबत झोली ध्यान की करे विभूत खिंता काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया।

आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखे सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी भाओ लखो है लखो वह लख बीस लख लख गेड़ा आखी आह एक नाम जगदीश एतराह पत पबड़िया चढ़िए हुए इकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर चुपे नह जोर जोर ना मंगन देना जोर जोर ना जीवन मर नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटा संसार जिसा जोर कर वेख्या सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती तित्ती वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिसवी धरती थाप रखी धर्मसाल तिसवी जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम बवाए निशान कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते ब्रह्मे का हड़त घड़िया है रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तूब देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुधनाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद गूढ़ आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट ते घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जेको कह पछै पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की शुद्ध कर्मखंड की बाणी जोर तथा होर ना कोई होर तथा जोद महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तथा सीतो सीता महमा माहे तागे रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहे ना ठागे जाहे जिनके राम वसै मन माहे तथा भगत वसहे के लो करहे आनंद सच्चा मन सोहे सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल ब्रह्मांड जे को कथे ता अंत न अंत तिथे लो अलो आकार जिव जिव हुकम तवैत बकार वेखे विकसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगंध बताओ भांडा पाओ मृत ढाल घड़िए शब्द सची टकसाल जनको नदर गर्म दिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत

कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिपत न माया दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिपत न माया पाहे बलंदड़ी बुझ गई।

संतोख सदा निर्वाह भो हावे भो त्रै गुण अतीत। अल्प आहार थोड़ा भोजन ओदे नाल दया पैदा होगी, बहुता खादा क्रोधी बन जाएगा, विकार पैदा हो जाएंगे। जित खादे तन पीड़ी है, मन में चले विकार, विकारां दा घर बन जाना है। चंद्रा शरीर है बड़ा सुहपन वाला है। अल्प आहार सुलप सी निंद्रा, फिर नींद भी थोड़ी है। हों तिस घोल कवाया, थोड़ा सवे थोड़ा ही खावे। अल्प आहार सुलप सी निंद्रा, दया शिमा तन प्रीत। ते तीजा बोल कलगी तर बाजा वाले पातशाह कहिंदे ने, पहला अल्प आहार फिर थोड़ी निंद्रा, ते तीजा सेवक दे विच गुण हुंदा जे दया, दया दे नाल प्रीति करदा। फरीदा बुरे दा भा कर, बड़ा औखा गल जे, बड़ी औखी कठिन जे, सौखी नहीं है बात। फरीदा बुरे दा भा कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगे, पल्ले सब कुछ पाए, बड़ा कठिन है। इथो तक बात बन जावे फरीदा, जो तै मारन मुकियां, तन्ना न मारे घुम, आप नड़े कर जाइए पैर तन्ना दे चौमा। अल्प आहार सुलप सी निंद्रा, दया शिमा तन प्रीत, सील संतोख सदा निर्वाहे माओ हावे भो त्रै गुण अतीत। भा फिर संसार चो तो निर्लेप हो जावेगा, रजो तमो सतो तो उपर उठ जावेगा, दया तेनु इथे तक लै जावेगी। गरीब निवाज कहिंदे, ठाठ तीर्था ते इशनान करना कठिन बात है, पर किसे ते दया कर दे तेनू वड्डा पुन लग जाना ही। अठ सठ तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान, जीवां ते दया करनी बहुत वड्डी कृपा है। एक साधु दे कोल दा चेला रहिंदा, एक छोटा जिहा बचन सांझा करां समझण वास्ते। कहिंदा जी, मुख कारण की होया करदा रब नूं मिलदा, एक एक कहानी की तरह बात पा के छेती समझ आ जाए। वह कहिंदा जी, लै मैथों एक सोटी लै ला, सोटी इनू इउं कर भी अठाठ तीर्थां ते इशनान करवा। जदों इहदे सुकी होई सोटी दियां करूंबलां हरियां हरियां फुट जाणगियां ना, निके निके जे पत्ते जे पैदा हो जाणगे हरे हरे जे, उदों मेरे कोल इस सोटी नूं वापस लै आवीं। अजे कुछ तीर्थां ते इशनान आप कीता, सोटी नूं कराया, वो कहिंदे कादे वास्ते चक्कर लाउणा जिथे जिथे जांदा। कहिंदा जी, मेरे उस्ताद होना क्या भी इहदा इशनान करा अठाठ तीर्थां ते, इहदे चों हरियां हरियां करूंबलियां पैदा हो जाणियां ने, रब मिल जाएगा रब। कईआं ने वेख के उहदे वाले हसे मखौल कीते, देखो कमला बंदा भी आ सुके होए डंडे नूं भी कितें करूंबलियां पैदा हुंदियां ने, हरे हरे पत्ते पैदा होंदे ने। कहिंदे देखो ये किवें जिहा काम करिआ, लगा होया इस कर्म विच चलदिआं चलदिआं किते तीर्थ दे बाहर नगर विच ठहरिआ होया, विश्राम करे, उत्थे चार चोर बंदे आ जांदे ने पिंड नूं तपाह करन वाले, लुट्टन खसुट्टन वाले, उहनां दीआं गल्लां सुणदा है भी इउं इउं नुकसान कीता जावेगा, इउं इउं नगर दे पिंड ते अत्याचार कीता जावेगा। जदों उन्हां दीआं गल्लां सुणदा है ना, ते जिस वेले मौका मिलदा उस डंडे डांग दे नाल उन्हां चारां नूं मार मार के भजा दिंदा, नगर जिहड़ा बच जांदा, बच जांदा लुट्टन खसुट्टन तों मरन तों बच जांदा। जदों दौड़ जांदे ने इह उह डांग सोटा जिहड़ा सुक्का होया सरहाणे रख के सौं जांदा भी सवेरे मैं निकल के अगांह चलांगा, ते जदों उठदा है ना ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਠਾਠ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਇਉਂ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ
ਆਗਰ ਜੇ ਤੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਡੰਡੇ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਮੂਲ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੁਲਸੀ ਦਇਆ ਨਾ ਛੋੜੀਐ ਜਵਲਾ ਘਟਮੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਣ ਖਾਹੇਗਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਹੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪੁਛਤਾਹੇਗਾ ਮਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦੀ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਮ ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਘਲਤਾਪਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮਨ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪੁਛਤਾਹੇਗਾ ਮਨ, ਪਾਪੀ ਜ਼ੀਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਦਇਆ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇਹੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪ ਮਰੈ ਅਵਰੈ ਨਹਿ ਮਾਰੀ। ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ

कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सलोक दया करनं दुख हरनं उचरनं नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत न माया दया करनं दुख हरनं उचरनं नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है

सुखदाता दुख भंजन हारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नो आप प्रतपाले पै पैरी तसै मनाई जियो जा की सरन पया गत पाईए सास सास हर नाम ते आईए तिस बिन अवर ना दूजा ठाकर सब तिसै की आ जाई जियो तेरा मान तान प्रभ तेरा तू सच्चा साहेब गुणी गहेरा नानक दास कह बेनंती आर पैर तुद त्याई जियो।

तैस बिना नहीं कोई जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोई वेद सिमरत कथा सासत भगत करह विचार मुक्त पाइया साध संगत बिन सजाए अंधार चरण कमल आधार जनका रास पूंजी एका तान मान दीवान साचा नानक की प्रवटेका चरण कमल आधार जनका

सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

ना सुने ही गोरिये आपन कन्नी सोए लगी आवे सोहरे नित ना पिये हुए नानक सुती पिये जान बिरती सन गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली बन श्री राग महला पहला कर दूजा आपे रसिया आप रस आपे रावण हार आपे हो गए चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रता मेरा साहेब रब रहा भरपूर रहाओ आपे माछी माछली आपे पानी जाल आपे जाल मड़कड़ा आपे अंदर लाल आपे बहबद रंगला सखिए मेरा लाल नित्र वे सुहागनी देख हमारा हाल प्रणवे नानक बेनती तू सरवर तू हंस कौल तू है कविया तू है आपे वेख बिगस श्री राग महला पहला करती जान ए तन करती बीज कर्मा करो सलल अपाओ सारग पाणी मन किरसाण हर हृदय जमाए लै पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े आ माया पित सुतो सगल काल तर माता तेरे हो है न अंत सखाया रहाओ बिखे बिकार दुष्ट किरखा करे इन तज आत्मे हुए त्याई जप तब संजम हो है जब राखे कमल बिगसे मद आसरमाई बीस सपतारो बासो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरंपरो चीने कह नानक इव एक तारे श्री राग महला पहला करती जा अमल कर तरती बीज शब्दो कर सच की आब नित देह पानी हुए किरसान ईमान जमाए ल पिस्त दोजक मूड़े ए बजानी मत जान सह गल ही पाया माल के माने रूप की शोभा इत विधि जन्म गवाया रहाओ ऐब तन चिकड़ो एहो मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई और उस्ताद नित पाख्या बोले क्यों बुझे जान नह बुझाई आखण सुनना पौन की बाणी एहो मन रता माया खसम की नदर दिले पसंदे जिन कर एक त्याया तीकर रखे पंज कर साथी नाओ सैतान मत कट जाई नानक आखे राहे पै चलना माल तन कितकु संजे आही श्री राग महला पहला कर चौथा सोई मौला जिन जग मौलिया हरिया किया संसारो आब खाक ते जिन बंद रहाई तन सिरजन हारो मरना मुला मरना पी करतारो डरना रहाओ ता तू मुला ता तू काजी जाने नाम खुदाई जे बहु तेरा पढ़िया होवे कोई रहे ना परिये पाई सोई काजी जिन आप तजया एक नाम किया अधारो है भी होसी जाए न जासी सच्चा सिरजन हारो पांच भक्त निवाज गुजारे पढ़े कतेब कुराना नानक आखे गोरस देई रहो पीना खाना श्री राग महला पहला कर चौथा एक स्वान दोए स्वानी नाल पलके पौंक है सदा ब्याल कूड़ छुरा मुठा मरदार कूड़ छुरा मुठा मरदार धानक रूप रहा करतार मैं पत की पंद न करने की कार हों बिगड़े रूप रहा बिकराल तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो अधार रहाओ मुख निंदा आखा दिन रात पर कर जो ही नी

सदगुरु से मोह पर जल करे माया उदास रहो गुरमुख कर्म कमावे पीछे हर बैराग आनंद एनस भक्त करे दिन राति हमें मारने चंद वड्डे पाल सत्संग।

भाई मिल हर हर कथा करहु, हर हर नाम बोहित है कल जुग, खेवट गुर शब्द तरहो। आवो संत मिलहो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करहो, हर हर नाम बोहित है कल जुग, खेवट गुर शब्द तरहो। मेरे मन हर गुण हर उच्च रहो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए,

अंतकाल पछता सी अंदुले जा जम पकड़ चलाया साब किच अपना कर कर राखिया खिन मैं भया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगण पछोताए कहो नानक प्राणी तीजै पहरै

जिनको साधु संग नाम हर रंग तिनी ब्रह्म विचारिया जियो। ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गह लीने हार जसो दीने जो न तावै नह मरी।

जप तापा गवन किया धरती परमाता एक खिन हृदय सांत न आवै जोगी बहड़ बड़ उठता वै जियो कर कृपा मोहे साध मिलाया मन तन शीतल तीर जपाया प्रभ अविनाशी बसिया कट

तुम सम्राट सदा सुखदाते, सब को तुम ही ते वरसावै, अवसर करहो हमारा पूरा जियो, दर्शन तेरे पवन पनीता, आत्म गढ़ बेकमति नाही जीता, तुम दाते तुम पुरख विधाते, तुद जेवड़ अवरना सूरा जियो, रेण संतन की मेरे मुख लागी, दुरमत विनसी कुबुद्ध अभागी, सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिनसे कूरा जियो, माज महला पंजवा, बिसरना ही ये वरदाते, कर कृपा भगतन संग राते, दिन सरैन जियो तुद त्याई, एहो दान मोहे करना जियो, माटी अंधी सुरत समाई, सब कछ दिया पलिया जाई, आनंद विनोद चोज तमासे, तुद भावे सो होना जियो, सुरत जिसदा दिता सब किश लैना, शक्ति अमृत भोजन खाना, सेज सुखाली शीतल पवना, सहज केल रंग करना जियो, सा बुद दीजै जित विसरै नाही, सामत दीजै जित तुद ते आई, सास सास तेरे गुण गावा, ओट नानक गुर चरना जियो, माज महला पंजवा, सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई, सो ज्ञान त्यान जो तुद पाई, सोई जप जो प्रभ जियो पावै, भाणे पूर ज्ञान ना जियो, अमृत नाम तेरा सोई गावै, जो साहिब तेरे मन पावै, तू संतन का संत तुम्हारे, संत साहिब मन माना जियो, तू संतन की करै प्रतपाला, संत खेलै तुम संग गोपाला, अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो, उन संतन कै मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन भाने, तिन कै संग सदा सुख पाया,

सोई सुख सहना जिते रखे बैकुंठ तुताई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नानक सुख पाया आठ पैर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ मेघ पटाया जल तल मई अल दै दिस वरसाया सांत पई बुझी सब दिसना आनंद पया सब ठाई जियो सुख दाता दुख भंजन हारा आपे बख्श करे जी सारा अपने किते नो आप प्रतपाले पै पैरी तिसै मनाई जियो जाके सरण पया गत पाई है सास सा सरनाम ते आई है तिस बिन होर न दूजा ठाकर सब तिसै किया जाई जियो तेरा मान तान प्रभ तेरा तू सच्चा साहिब गुणी गहरा नानक दास कह बेनंती आठ पैर तुल त्याई जियो माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुटे गुरपुरे के चरण मन बुटे सहज समाद लगी लव्यंतर सो रस सोई जाने जियो अगमे गोचर साहेब मेरा घट घट अंतर वरतै नेरा सवाय लिपत जिया कदाता को बिरला आप पछाणे जियो तब मिलने की ए निशानी मन इको सच्चा हुक्म पछाणी सहज संतोख सदा तृप्तासे आनंद खसम कै पाणे जियो अति दित्ति प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा किन्नी दया गोपाल गुसाई गुर कै चरण वसे मन माई अंगीकार किया तिन करतै दुख का डेरा ढाया जियो मन तन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा तन ना दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए इको स्वामी आही आ जियो जो किश करे सो आपे आपै बुद्ध सियाण बकशु न जापै अपनिया संतां नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाहिया जियो चरण कमल जन काय आधारो आठ पहर राम नाम वपारो सहज आनंद गावै गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व समाहिया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जित सच त्याई है सोरदा सहेला जित हार गुण गाई है सात अर्थ सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम बिटो कुर्बानो जियो सच बड़ाई कीम न पाई कुदरत कर्म न कहना जाई त्याए त्याए जीवै जन तेरे सच शब्द मन माणो जियो सच सलाहण बड़ भग पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरे तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थांत नंतर सच्चा सोई नानक सच त्याई है सदी अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुसहेला जापे अमृत नाम संत संग मेला घड़ी मोहरत सिमरत पल स्पंजै जीवन सफलत ताई जियो सिमरत नाम दुख सब लाते अंतर बाहर हर प्रभ साते पै पौ परम खोया गुरपुरै देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरत वड ऊचे अपारा नौ निध नाम परे भंडारा आदि अंत मद प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो कर किरपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचै सादर वाला देह दान नानक जन मंगै सदा सदा हर त्याई जियो माज महला पंजवा एथै तू है आगै आपे जी जंतर सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं तारे ओट तुम्हारी जियो रसना जप जप जीवै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिने सुख पाया
सो जन्म न जुए हारी जियो नाम अवखत जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावो दिन राती सफले हा है कारी जियो दिष्ट धारे अपना दास वारिया घट घटे अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सविन होर दूजा नाई बाबा नानक ए मत सारी जियो माज महला पंजवा मन तन रत्ता राम।

आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिते लहन विजोगा जियो अंचल लाए सब शिष्ट त्राई अपना नाउ आप जपाई गुरबोहित पाया कृपा ते नानक तुर संजोगा जियो माज महला पंजवा सोई करना जे आप कराए जिथे रखे सा पली जाए सोई सियाणा सो पतवंता हुक्म लगे जिस मीठा जियो सप रोई कत धागे जिस लाए लए सो चरनी लागे ऊंद कमल जिस होए प्रगासा तिन सर्ब रंजन डीटा जियो तेरी महिमा तू है जाने अपना आप तू आप पछाणे हों बलिहारी संतन तेरे जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो तू निर्वैर संत तेरे निर्मल जिन देखे सब उतरै कलमल नानक नाम ते आए त्याए जीवै बिनसिया भ्रम पौ तीठा जियो माज महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगै जिस को मरते कड़ी न लागै पार ब्रह्म जो सदी सेवै सो गुर मिल ने चल कहना प्रेम भगत जिसकै मन लागी गुण गावै या दिन नित जागी बाह पकड़ तिस स्वामी मिलै जिसकै मस्तक लैणा चरण कमल भगता मन बुटे बिन परमेसर सगले मुठे संत जना की तोड़ नित बांचै नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाई है जिस सिमरत वर नहीं चल पाई है नानक को प्रभ होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदिया महला पहला घर पहला एक ओंकार सुकर प्रसाद शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगह महल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा सच्चे मन पतिया बणिया हों वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमति मन वसावणिया रहाओ ना को मेरा हों किस केरा साचा ठाकर त्रिपवन मेरा हों मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछो तावणिया हुक्म पछाणे सो हर गुण वखाणे गुर कै शब्द नाम निशाणे सबना का दर लेखा सचै छूटस नाम सुहावणिया मन मुख भूला टौर न पाए जम दर वदा चोटा काए बिन नावै को संघ न साथी मुक्ते नाम ते आवणिया साकत कूड़े सच न पावे दुबदा बादा आवै जावै लिखिया लेख न मिट कोई गुरमुख मुक्त करावणिया पियड़ फिर जा तो नाई झूठ बिछनी रोवे ताही अवगण मुठी मैल न पाए अवगण गुण बखसावणिया पियड़ जिन जाता प्यारा गुरमुख बूझै तत् विचारा आवण जाना ठाक रहाए सच्चे नाम समावणिया गुरमुख बूझै अगत कहावै सच्चे ठाकुर सच पावै नान

पीला काला बेदा करी पुकार, हो एक चील रहा मालत हरे दुर्मत मत विकार, ना हो ना मैं ना होवा। नानक शब्द विचार महला पहला, वातर पखाल पखाले काया, आपे संजम होवै अंतर मैल लगी नहीं जाना, बाहरों मल मल धोवै अंधा भूल पिया जम जाले, वस्त पराई अपनी कर जाना, होमे विच दुख काले, नानक गुरमुख होमे टुटै ता हर हर नाम त्यावै, नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावै पवड़ी। काया हंस संजोग मेल मिलाया, तिन ही किया वियोग जिन पाया, मूर्ख भोगै भोग दुख सबाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हर को सोग वियोग अपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया, सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया, करता करे सो होग ना चले चलाया। श्लोक मोहल्ला पहला, कूड़ बोल मुरदा रखाए, अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापै। मोहल्ला चौथा, जस दे अंदर

भीष कुति तहत बोला जे समझाइए पढ़िए सिमरत पाठ अंधा चानन रखिए दीवे बले पचास चौने सोना पाइए चुन चुन खावे घास लोहा मारन पाइए ढहे ना होए कपास नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश महला पहला कहा कंचन तुटै सार अग्नि गंड पाए लोहार गोरी सेती तुटै पतार पुती गंड पवे संसार राजा मंगे दिते गंड पाए भुख्या गंड पवे जा खाए काला गंड नदियां मी झोल गंड प्रीति मिठे बोल बेदा गंड बोले सच कोए मोया गंड नेकी सत होए एत गंड वरते संसार मूर्ख गंड पवे मोहे मार।

राख कराई, जीवड़ साहेब तेवड़ दाती दे करे रजाय, नानक नजर करे जस उपर सच न वड्याई। महला दूजा, आखन आख न रजिया, सुन न रजे कान, अखी देख न रजिया, गुण गाह के कवान, भुख्या भुख न उतर गली भुख न जाए, नानक भुखा तां रजै जां गुण कै गुणी समाए।

लाभलो मजकूट को मावे बोत उठावे पारो तू काया मैं रुल दी देखी ज्यों तारे ऊपर चारो सुन सुन सिका मारी सू

नर प्राणी चाकरी करे नर पत राधे अर्थ सब माया कै बंद कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सत गुरु के जत हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद किसे बहुपाल कर माया कहताई

आपे जल थले वर्तदा मेरे गोविंदा राव रहया नहीं दूरी जियो। हर अंतर बार आप है मेरे गोविंदा हर आपे रहा पर पूरी जियो। हर आत्मा राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखे आप हदूरी जियो। हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा हर आप बजाए त्यों वाजे जियो। हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जियो। आपे सरन पवाएंदा मेरे गोविंदा हर भगत जना रख लाजे जियो। वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध काजे जियो। गौड़ी माज महला चौथा मैं हरे नामे हरे बिरहु लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सखा हर पाई जियो। गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो। जप गुरमुख नाम जियो पाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो। फिर बहुड़ न पाव जाली फेरे जियो। क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाऊ जियो। हरे मेलो संत जियो मन लागा पाऊ जियो। गुर शब्दी पाइया हरे प्रीतम राव जियो। वडपागी जप नाओ जियो मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो। हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो। सतगुरु मत नाम सदा परगासा जियो। जन नानक पुयड़ी मन आसा जियो। गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो। मन अंदर अमृते गुरमत हर लीवा जियो। मन हर रंग रतड़ा

मेरा प्रीतम मित्र हरे पुरख सजान जियो, गुर मेले संत हारे सुगड़ सजान जियो, हाउ नाम विटहू कर बाण जियो, हाउ हर हरे सज्जन हर मीत दसाई जियो, हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो, सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो, हर नामे नाम समाई जियो, मैं वेदन प्रेम हर बिरहो लगाई जियो, गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो, हर होहे दयाल हर नाम ते आई जियो, जन नानके हर अस पाई जियो। महला पंजवा राग गौड़ी गुआरेड़ी चौप दे क्यों कारी, सतगुरु प्रसाद किन बिद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाइया हरि नाम सहाई, रहो कुशल न ग्रह मेरी सब माया, उच्चे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया, हस्ती कोड़े देख बिगासा, लश्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हौ मैं कै फासा, राज कमावे दै दिस सारी, माने रंग भोग बहु नारी, ज्यों नरपत सपने पखारी, एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किश करे सु हर किया, सग भगता पाया, जन नानक होमे मार समाया, इन विदे कुशल होत मेरे पाई, यों पाईया हर नाम सहाई, रहाओ दूजा गौड़ी गुआरेड़ी महला पंजवा, क्यों परमिया परम किसे का होई, जा जल थल मैयल रव्या सोई, गुरमुखी उबरे मन मुख पत खोई, जिस राखे आप राम दया राम, तिस नाही दूजा को पहुंचन हारा, रहो सामा वरते एक अनंता, ता सुख सौ होए अचिंता, ओ सब किश जाने जो वरतंता, मन मुख मोए जिन दूजी प्यासा, बहु जोने पवे तुर किरत लखियासा, जैसे बीजे तैसा खासा, देख दर्शे मन पया बिगासा, सब नदरी आया ब्रह्म प्रकाशा, जन नानक की हरि पूरन आसा। गौड़ी ग्वारड़ी महला पंजवा, कई जन पै कीट पतंगा, कई जन गज मीन करंगा, कई जन पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरथ जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चरंकाली देह संजरिया, रहो कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ हिर खड़या, कई जन्म साख कर उपाया, लख चौरासी जोन परमाया, साध संग पयो जन्म प्राप्त, कर सेवा पज हर हर गुरमति, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरे दरगह परवान, जो किश होवा सो तुझते होग, अवर ना दूजा करने जोग, ता मेरे आजा लेहो मलाए, कहो नानक हरे हरे गुण गाए। गौड़ी ग्वारड़ी महला पंजवा, कर्म पुम मोय बोवो नाम, पूर्ण होए तुम्हारा काम, फल पावे मिटे जम त्रास, नित गावे हर हर गुण तास, हर हर नाम अंतर उर धार, शीघ्र कारज लिहो सवार, रहो अपने प्रभ स्यों हो सावधान, ता तू दरगह पावे मान, उक्त सयानप सगली त्याग, संत जना की चरनी लाग, सर्ब जिया है जा कै हाथ, कदे ना विसरे सब कै साथ, उपाव सोड़ गहु तिसकी ओट, निमक माहे तेरी होवे तेरी छोट, सदा निकट कर तिसनो जाने, रब की आग्या सत करमान, गुर कै बचन मिटावो आप, हर हर नाम नानक जप जाप। गौड़ी ग्वारेड़ी महला पंजवा, गुर का बचन सदा बनासी, गुर कै बचन कटी जम फासी, गुर का बचन जी कै संग, गुर कै बचन रचे राम कै रंग।

गुर का बचन कतहु ना जाए, गुर कै बचन हर के गुण गाए, गुर का बचन जी कै साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर कै बचन नरक ना पवे, गुर कै बचन रसना अमृत रवे, गुर का बचन प्रगट संसार,

घटना आवेबद दो जाई कौना ने जैसा मासक लेख लेखाए सोयत खजाने लियारा लाए गोड़ी महला पंजवा डर डर मरते जब जानिए दूर डर चूका देखिया पार पूर सतगुरु।

जाकुरासारो सुन रस नहीं लपटायो जाया दरगा चल सो के सुखो नजर लया वह चल जाका सब किस तक होए नानी तक सदा सुख होए गौड़ी मोहल्ला पंजवा

ब्रह्म रिजावो रहाओ कवन सुबु जाते रिकारो कवन सुबेद जत पौजल तरो कवन ताप जत सभ्या होए कवन सुनाम हो मैं भल खोए।

अंतर धामे सम्राट पुरुष पार ब्रह्म स्वामी हम दास तुम ठाकुर मेरे मानवत नानक प्रभु तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पाए सम्राट अंगा तांको कच नाही का लंगा माधो जाको आयास तुम्हारी तांको कच नाही संसारी।

खात पीत खेलत हस्त बेचार कवन अर्थ मृतक सिगार जो ना सुने जस परमानंदा पस पंखे जो ते मंदा।

मंडला एक स्वामी सोएं करण हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलहार।

तरन न जाई, पौ बेड़ा जियो चढ़ाऊ। कहो नानक देवे काहू, मारू महला पहला घर पहला। करनी कागद मन मसवाणी, बुरा पला दुए लेख पए। ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चली है, तौ गुण नाही अंत हरे। चित चेत सु की नहीं बावरिया, हर बिसरता तेरे गुण गलिया रहाऊ। जाली रैन जाल दिन हुआ जेती, घड़ी फाही तेती। रस रस चोगा चुगै नित फासे, छूट समूड़े कमन गुणी। काया आरन मन विच लोहा, मन काया आरन मन विच लोहा। पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस उपर। मन जलिया सन्नी चिंत पई, भया मनूर कंचन फिर हुवे। जे गुर मिले तनिहाउ, एक नाम अमृत ओह देवे। तो नानक त्रिरस देहा, मारू महला पहला। बिमल मजार बसस निर्मल, जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत, संग दुख नहीं रे। दादर तू कबे न जान सरे, बक्स सिबाल बसस निर्मल। जल अमृत ना लख सरे राव, बस जल नित न वस्ते अली अल। मेर चचा गुन दे, चांद कुमुंदनी दूरो निवसस। अनपव कारण ने अमृत खंड, दूध मद संचस। तू बन चातर रे, अपना आप तू कबू ना छोड़स। पिसन प्रीत ज्यों रे, पंडित संग वसे जन मूरख। आगम सास सुने, अपना आप तू कबू ना छूड़ छोड़स। सुआन पूछ ज्यों रे, एक पाखंडी नाम न राचे। एक हर हर चरणी रे, पूर्व लिखिया पावस नानक। रसना नाम जाप रे, मारू महला पहला सलोक। पतत पनीत असंख है, हर चरणी मन लाग। अड़सठ तीर्थ नाम प्रभ, नानक जिस मस्तक भाग। शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली, सुन सा की एक बात सोहेली। जो मैं बेदना सा किसे आखा माई, हर बिन

रजाणी, हर बिन जियो ना रहे, कैसे राखा माई राऊ, हौ दुहागन खरी रंजाणी, गया सो जोबन धन पछताणी, तू दाना साहब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, भणत नानक आंदे साए ही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही, मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नौ सुभागा, गुर की चरनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहब का हुक्म ना कर।

भगत करो तेरी राया। पियता पानी आनी मीरा खायता पीसन जाओ। पखा फेरी पैर मलोवा जबत रहा तेरा नाओ। लून हरामी नानक लाला बख्शे तुद वड्याई। आद जगार दया पत दाता तुद बिन मुक्त न पाई। मारू महला पहला कोई आखे भूत ना को कहे बेताला। कोई आखे आदमी नानक बेचारा भया दीवाना सा का नानक बौराना। हो हर बिन अवरना जाना रहाऊ तो दीवाना जानिए जा भय दीवाना होए। एक ही साहिब बहरा दूजा वरना जाने कोय तो दीवाना जानिए जा एका कर कमाए। हुकुम पछाने खसम का दूजी अवर सियान पकाए तो दीवाना जानिए जा साहिब।

माने हुक्म सुहै दर साचे आकी मरे अफारी जंगम जोदा जति सुनियासी गुरपूरै विचारी बिन सेवा फल कबह ना पावस बिन सेवा फल कबहु ना पावस सेवा करनी सारी ने धनिया धन नि गुरिया गुर निमाणिया तू मान अंधले मानक गुर पकड़िया नि ताणिया तू तान होम जपा नहीं जानिया गुरमती साच पछाण नाम बिना नाही दर टोई झूठा आमन जान साचा नाम सलाई है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बौड़ न मैला हुए जब लग साहब मन वसै तब लग बिघन न होए नानक सिर दे छुट्टी आए मन तन साचा सोए मारू महला पहला जोगी जुगत नाम नरमायल थांके मैल नाराती प्रीतम नाथ सदा सच संगे जन्म मरण गत बीती गोसाई तेरा कहा नाम कैसे जाती जा तो पीतर महल बुलावे पूछो बात निरंती रहाओ ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान इशनानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रै भवन एका ज्योति जेवा डंडी हो घट शाबा तोलो नाम अजाची एको हाट शाहो सबना सिर बन जारी एक पाती दोवे सिरे सत गुरु न बेड़े सो बूझे जैसे एक लिव लागी जियो रहे निबराती शब्द वजाय शब्द वसाए भरम चुकाए सदा सेवक दिन राती ऊपर गगना गगन पर गोरख तागा ताक आगम गुरु पनवासी गुरबचनी बाहर घर एको नानक भया उदासी राग मारू महला पहला कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एंड